0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों?
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या?
0: क्या?